0: 질문이.
1: 내 말이
0: 돼. 걔제에서 도주고 해서 미소를 키는 말 미디. 애가 파홍인 게 이제 미디 하마랑 갈아 두면 약간 티디. 이게 말았어. 이게. 오케이. 그럼 가비 가비 게 뭐 코리 러버도 게네스테 미 코리 게 러버.
1: 하마랑 갈리베. 아무 밥 맞은 한 단순
0: 괜찮아. 아, 또. 아. 알아 리스 라베 게 미 헤노스토. 미 하마 아도 할란타.
2: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: ईशा सुवाने कुरंत
1: कोब्बल
0: दिवे ही बहुगा सुकुं कुरे वेया कुरता की कोबा
2: अलिफ सीनु नूनु ता शवियन
0: रंगाळो फेमवेरुं एमे मैक को बुनानी की हिने
2: नाने फुलफिल लेबो
0: वारर रंगाळो वेहेता फेन्नेगु मे बुनम की कोबा
2: लिबे फुरसत के बेनुं हेफु माडु कोब्बल की कुरं कुरा सुवाले तमे
0: मि तैयार वणी दिवे हेफे मुं गेनस्ते शवियनी प्रोग्राम
2: शवियनी प्रोग्राम ए दिवे हे बहुगा सुवालो अन्ना कोंगे रे को अन्ननी
0: कोम्मे हुकुरु आदि होनी हेरु दोहेगेरे आगड़ी तिरी हुगा
3: शावियन

0: नुआ दी है 1 MHz दी वही FM ईशान अमादो वागुतु
1: नुआ दी है 1 MHz दी वही FM
2: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: लोबी लोबी